ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है, 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 मई 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुप्रभात। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 9 बजे सुनिएगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। 10 बजे हिंदी में समाचार। 10:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा मैचलेस म्यूजिक आर। 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर बॉलीवुड की अपडेट्स देते हुए सुनिएगा कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स। 12 बजे हिंदी में समाचार और 12:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्ले इट कूल।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मंगल भवन मंगल
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
4: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।

0: ओ भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। घर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनक लता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइन 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
2: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
4: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
2: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रही हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 2 गुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
5: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
6: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
2: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
7: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, श्रोमणी अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर 30 स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
8: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले चार दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
2: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
9: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजीलॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धरमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा, हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a five-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong. Clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity.
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
10: Additional Secretary Gulf in the Ministry of External Affairs, Aseem Mahajan, said that the government is closely monitoring developments in the Gulf and West Asia region. He said Indian embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals.
11: Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines. They are also in close touch with the local governments. Advisories are being issued including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups and Indian companies to address their concerns.
10: Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, informed that the merchant vessel Nissos Keros, a crude oil tanker, has safely transited the Strait of Hormuz and is expected to arrive in Visakhapatnam on the 3rd of June. He said the vessel is carrying around 270,000 metric tons of crude oil.
12: A merchant vessel Nissos Keros, a Marshall Island flag crude oil tanker, safely transited Strait of Hormuz on the night of 25-26 and is bound to arrive at Visakhapatnam on 3rd June. This merchant vessel is carrying crude oil approximately 270,000 metric tons. It has all foreign crew members and is a Marshall Island flag vessel. All Indian seafarers in the region are safe.
10: The Ministry of Health and Family Welfare has released the National Family Health Survey 6 with the data reflecting India's accelerated progress in maternal and child health, nutrition and financial protection. The survey released yesterday highlights that institutional deliveries increased from 88.6% to 90.6%. We have a detailed report.
13: The National Family Health Survey 6 showed 95.9% of pregnant women received antenatal care, while mothers receiving antenatal care in the first trimester increased from 70% to 76.2%. It also said that India's total fertility rate, TFR, remains at 2 and vaccines received by children aged from 12 to 23 months remains consistently high above 96%. The Health Ministry said that these improvements underscore the continued impact of national family planning programs including Mission Parivar Vikas. The survey also records continued advancement in women's digital inclusion and financial empowerment. It said that women who had ever used the internet nearly doubled from 33.3% to 64.3%. The survey said that Ayushman Bharat, PMJAY and expanded health protection initiatives strengthen financial security in healthcare. With Akshit, Swati Rakheja, Akashwani News, Delhi.
10: President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, will arrive at Bodh Gaya in Bihar this morning on a five-day visit to India. He will be accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This will be the first visit of President Hlaing to India in his current capacity. We have a report.
14: President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, will offer prayers at Mahabodhi Temple and Sujata Temple in Bodh Gaya. Later today, he will arrive in New Delhi, where he will meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. On Monday, he will hold discussions with Prime Minister Narendra Modi on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. Briefing the media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said all issues that form the part of the gamut of relations between Myanmar and India will come up for discussions during meeting between the two leaders.
15: This is Myanmar's president's first visit and first visit to India in his official capacity right now. Myanmar is a neighbor. It lies at the confluence of India's neighborhood first, Act East and Mahasagar policies. This visit is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries.
14: As a part of the visit, the Myanmar president will also travel to Mumbai on 2nd of June for business and industry interactions and site visits. With Suparna and Anupam, this is Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
10: Outgoing Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has called a Congress Legislative Party CLP meeting at 4 p.m. today to elect its new leader, with D.K. Shivakumar emerging as the frontrunner to succeed him. Governor Thavarchand Gehlot has accepted Mr. Siddaramaiah's resignation and asked him to continue as caretaker chief minister until a new leader is chosen. All 136 Congress MLAs have been issued a circular to attend the CLP meeting. AICC General Secretary and Karnataka in charge Randeep Singh Surjewala will observe the proceedings. After the new CLP leader is elected, he will meet the governor to seek permission to form the government and finalize the date for the swearing-in of the Council of Ministers. Our correspondent reports that the cabinet formation exercise has already started, with many aspirants trying to get ministerial berths. In Punjab civic body elections, the ruling Aam Aadmi Party, AAP, has won 958 of the 1,977 wards across 8 municipal corporations, 75 municipal councils and 19 Nagar Panchayats. The Congress won 397 wards, while the Shiromani Akali Dal won 192 and the BJP secured 172 wards. The BSP managed just 7 wards. Interestingly, independents secured 251 wards, placing them third. A total of 7,554 candidates contested in these urban local body elections held on the 26th of this month. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. President Draupadi Murmu has extended greetings to the people of Goa on its statehood day today. The president said that Goa is renowned not only for its rich cultural heritage and warm hospitality, but also for its remarkable progress in education, technology, startups and sustainable development. Meanwhile, Vice President C.P. Radhakrishnan will participate in the Statehood Day celebrations at the Kala Academy in Panaji today. More from our correspondent.
16: The Statehood Day celebrations in Goa today will highlight the state's remarkable transformation over the last 4 decades. After liberation from Portuguese rule in 1961, Goa became a union territory along with Daman and Diu. A defining moment came in 1967 when Goans voted in the historic opinion poll to retain Goa's distinct identity. The recognition of Konkani as the official language in 1987 paved the way for statehood, and Goa became India's 25th state on 30th May that year. Today's program includes a release of a commemorative stamp on renowned cartoonist Mario Miranda, a launch of coffee table book, presentation of awards and citizen welfare initiatives. Later in the day, the Vice President will visit the CSIR National Institute of Oceanography in Goa, where he will tour research and technology exhibits and interact with scientists and release a coffee table book of CSIR NIO. Mahesh Sopre, Akashwani News, Panaji.
10: Prime Minister Narendra Modi extended his greetings to the people of Goa. He said this occasion is an opportunity to remember all those who worked tirelessly for the state's progress and identity. The special intensive revision SIR of electoral rolls begins in Odisha today. The month-long exercise being conducted by the Election Commission of India will continue till the 28th of June and cover over 3.33 crore voters across the state. The revision aims to update the voters list by removing duplicates, deceased and ineligible entries while including all eligible voters. More than 45,000 booth level officers have been deployed for door-to-door verification and distribution of forms. The India Meteorological Department IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over West Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands today. The IMD has also predicted thunderstorm accompanied with hailstorm over Haryana, Punjab, Delhi, Rajasthan, Vidarbha and Chhattisgarh. The Met Department said that northeastern states and coastal Karnataka are likely to experience thunderstorm accompanied with lightning. Heatwave conditions are likely to prevail over West Madhya Pradesh and Telangana. In sports, India continued its impressive performance at the Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, taking its medal tally to 8, including 4 golds, 2 silver and 2 bronze, and climbing to second place in the standings behind China. On the second day of the competition yesterday, Indian athletes won 7 medals, including 4 golds. The standout performance came from 19-year-old Pooja Singh, who clinched the gold in the women's high jump with a leap of 1.93 meters. India's other 3 gold medals came from Nitin Gupta, who won the men's 5,000-meter race walk, while Amanat Kamboj topped the women's discus throw and Rahul Jakhad bagged the yellow medal in the men's decathlon. In cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in qualifier 2 at New Chandigarh last night. With this victory, Gujarat Titans have set up the title clash against defending champions Royal Challengers Bengaluru, which will be played in Ahmedabad tomorrow at 7:30 p.m. Chasing a formidable target of 215 runs, the 2022 champions produced a batting masterclass, reaching 219 for 3 in just 18.4 overs. Skipper Shubman Gill led from the front with a scintillating 104 of 53 balls, while Sai Sudarshan scored 58 runs. Gill was adjudged player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
9: Thank you, Naresh. Ministry of Home Affairs clears record CAPF deployment for 57-day Amarnath pilgrimage, says the

ऐसा लिखने से बहुत अच्छा लगता है हम, ठीक है दुर्गेश जी। तो चलो, और आई थिंक यस दैट्स ऑल, एंड सो यस वी विल बी मूविंग ऑन विद दिस नेक्स्ट वन। दिस टाइम आई मीन दिस एक्सक्यूज मी, वी आर शिफ्टिंग द जॉनर अ लिटल बिट बिकॉज यस वी आर मोर इनटू अल्टरनेटिव यू नो पॉप पंक काइंड ऑफ, बट अगेन यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम दैट genre and listen to another one. So it's going to be a very surprising tracks for all of you lovely listeners. Stay tuned. Up next, this is Green Day, Bollywood of Broken Dreams.

सुनि सेतु आकाशवाणी कोहिमा एफएम टकपन 103 मेगाहर्ज पर अपनी एन प्रोग्राम दी थके हुनि आसे आउ इते हुनि हबो हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम आरजेस चॉइस दैट इज मोलका पसन हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम सो आरजे जेकब अपनी एन सब के वेलकम करि आसे स्वागत करि आसे नमस्ते और सलाम कोइने जनाय दि आसे अपनी के लगे फीडबैक सजेशंस नले थॉट्स टैक्सी कोले इते नंबर टे लिखियो पारे 9436805333 आ लिखिबो गने कोड आसे एफएम स्पेस एफ वेल लिसनर्स कैन प्रोग्राम शुरू करि दि आसे पहिला गीत हुनिबो अपनलोके मोहित चौहान आरो श्रेया घोषाल लगा वास्ते फिल्म आसे प्लेयर्स गीत लिखिया हुई से आशीष पंडित म्यूजिक दिया हुई से प्रीतम

इधर कोई मैसेज लिखी ना पता ही ना से। गुड मॉर्निंग आरजे जेकब, वाह क्या शानदार गाना बजा रहा है जी। क्योंकि ना लिसनर्स ऐसे शयामा बाय रायका वर एंड फैमिली खंडवा मध्य प्रदेश से कोई ना लिखी से। वेल थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, लिख के भेज दिया इसीलिए। एंड यथाकुल लिखिया से, गुड मॉर्निंग आरजे जेकब, हम आपकी प्रोग्राम डीटीएच पर सुन रही है, बजाते रहो। लिसनर्स ऐसे प्रभु दयाल शिवदे शिवा बसंती बाई और गणेश शिवदे निपा नगर मध्य प्रदेश से कोई ना लिखिया से। वेल थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग। अनदर मैसेज लिखिया से, गुड मॉर्निंग एफएम ट्रेकअपन परिवार सुर एंड जय माता दी रेडियो लिस्टनर्स ग्रुप ग्राम जसवादी से कोई ना लिखी है। वेल थैंक यू सो मच सुर एंड जय माता दी रेडियो लिस्टनर्स ग्रुप। अनदर मैसेज लिखी है ये थकनपुर से फ्रेश नगर तक आने वाली निंदिया एक्सप्रेस प्रभत नगर पहुंच चुकी है, यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपने हसीन सपनों से जग जाए। गुड मॉर्निंग, आपकी पसंदीदा गाना लगातार एफएम ट्रगपान 103 मेगाहर्ट्ज़ पर लिसनर्स दुर्गेश नगनपुरी ने लिखी है। वेल थैंक यू सो मच दुर्गेश नगनपुरी जी फॉर योर मैसेज। तो लिसनर्स कैन प्रोग्राम भी शेष करे टाइम हुई जा से टेगने प्रोग्राम शेष थे हनीब अपन लोग के सलीम मर्चेंट लगा वास्ते से फिल्म से पाठशाला और तो गीत लिखा हुई से और म्यूजिक दिया हुई से हनिक हनीफ शेख और तो गीत लोग थे प्रोग्राम तो शेष करे हम किंतु समय 10:20 हाल के अपनी कन हुए हम वर्ल्ड न्यूज एंड राइट ऑफ द डेट अपनी कन वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम आसे दैट इज फ्रॉम 10:30 वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम थे तथा भी आरजे चॉइस आसे अपनी कन शुनब पा और मैं आको अपनी कन के लग कर 11:30 विथ मोर हिंदी फिल्म सॉन्ग दैट इज लाइव फोन इन प्रोग्राम आसे अपनी कन डायल कर और मैं अपनी कन फोन रिसीव कर मैं अपनी कन कारण गाना बजा दिया हम आगे दे भी कह दी कि अपनी कन इतना बार रेडी कर रखी फोन कर प्लीज अपनी कन फिल्म नाम तो ठीक ठाक मनते रखी और यू फिल्म और टाइटल सॉन्ग कौन तो बजाबले आज टाइटल ऑफ द सॉन्ग यू मनते रखी एडवांस पर मैं फोन कर मैं भी फट फट विचार लो पार और दूसरा मानु लगे कल तो दिले नब ये मैं टाइम वेस्ट नाकने आइडिया कह दी से। सो एनीवे थैंक यू सो माच फॉर ट्यूनिंग एंड थैंक यू सो माच फॉर योर मेसेजेस। तो टिल देन लास्ट गाना आज तो शुनि कि एन्जॉय कर एंड आई विल बी बैक अगेन एट 11:30 विथ फॉर लाइव फोन इन प्रोग्राम। सो स्टे सेफ।

0: हेलो।
1: जय माता जी।
0: जय माता जी।
1: मेरा नाम पूरण वर्मा है
0: हाँ जी
1: और
0: पूरन जी बताइए।
1: मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव थाना
0: राजस्थान।
1: अंशमल बुगला से बात कर बोल रहा हूँ सर।
0: ओके सो कैसा है आप लोग?
1: बस सर बढ़िया हूँ, आप सुनाओ।
0: मैं भी ठीक ठाक ही हूँ, चलता है।
1: जी
0: सो कौन
1: सर,
0: से गाना सुनना है आज?
1: फिल्म का नाम रहेगा सर चल मेरे भाई।
0: चल मेरे भाई।
1: हाँ जी,
0: हाँ चल मेरे भाई, कौन से गाना सुनना है इससे?
1: इसमें गाने के बोल है, वो गाना है तेरी नजर का तीर, सोनू
0: तेरी नजर का तीर।
1: निगम। सोनू निगम और नरोला की ऐसे कोई आवाज है, तेरे इसी में पड़ गया रे, ऐसा कुछ गाना है।
0: आजकल की लड़कियां सोनू निगम का आवाज में तो दो थे यहाँ, मेरे नींद जाने और आजकल की लड़कियां,
1: जी।
0: ये दोनों है सोनू निगम के आवाज में।
1: अरे और गाना नहीं है सर इसमें?
0: है दूसरा भी है लेकिन सोनू निगम के आवाज में तो ये दोनों है। और एक तो है ओ मेहंदी रंग लाए, उदित नारायण, सोनू निगम, अलका याग्निक, जसविंदर नरूला, ये सबका
1: जी।
0: आवाज में है। तो कौन से गाना सुनना है?
1: उसमें एक गाना था सर, तेरी नजर का तीर मेरे दिल में पड़
0: ये
1: गया रे, ऐसा कुछ गाना
0: ऐसा
1: था।
0: ऐसा टाइटल तो नहीं है।
1: तो आपने कौन सा बताया? मेहंदी रंग लाई है, सुना दीजिए मैं। हाँ
0: मेहंदी।
1: जी
0: ठीक है सुना देगा।
1: जी सबसे पहले तो आप हैं
0: ओके थैंक यू।
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अविनाश जी है, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी भाई है, अमल है, बिमल है, और आकाशवाणी कोई माँ के श्रोता जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है उन श्रोताओं तक मोबाइल ऐप न्यूज AIR ऐप के माध्यम से, DTS और कोई माँ के श्रोताओं के पास रेडियो पर। थैंक
0: ओके बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके थैंक
1: यू सर।
0: यू। वेल लिसनर्स का नीति होनी वो आप लोगों के उदित नारायण, सोनू निगम, मलका याग्निक और जसपिंदर नरूला का वास्ते फिल्म से चल मेरे भाई।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हेलो।
1: नमस्कार सर
0: नमस्कार नमस्कार।
1: जी। मैं ग्राम गुनौरा, जिला सतारा, महाराष्ट्र से तनुश्री सूर्य बात कर रही हूँ। जी
0: ओके तनुश्री जी, बताइए क्या है, कैसा है आप?
1: सर, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ।
1: हैं? जी। और सर, फिल्म का नाम है सलामी।
0: सलामी।
1: जी
0: सलामी। हाँ सलामी में कौन से गाना सुनना है? सलामी फिल्म से।
1: जी सर, गाने के बोले से चेहरा क्या देखती हो, ऐसा
0: ओके ठीक है ये।
1: कर कर गाने
0: ओके आशा
1: ऐसा।
0: भोसले और कुमार कुमार सानू का ना।
1: जी सर, जी
0: ओके ठीक है, बजा देगा।
1: जी और
0: ओके
1: सर, डेडिकेट मैं आपको और मेरे पापा को और हमारे सभी श्रोताओं को करना चाहती हूँ।
0: ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके, बाय
0: ओके
1: बाय।
0: बाय बाय। ओके वाल लिसनर्स का नीटिया होनी वो अपने लोग की आशा भोसले और कुमार शानू लगा वास्ते फिल्म से सलामी।

0: हेलो
1: हेलो हेलो नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: ओके राकेश जी, ठीक है, कैसा है आप?
1: जी बहुत बढ़िया है। इस वक्त जो है अभी बारिश हो रही है।
0: ओके, इधर में भी बारिश हो रहा है अभी।
1: जी जी, तो यहाँ भी बारिश हो रही है तो मौसम भी बहुत अच्छा है और ऐसे मौसम में मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: जी जी जी जी जी
0: तो आज कौन से मूवी का गाना सुनना है आपको?
1: आज मुझे फिल्म का नाम है सलामी।
0: सलामी?
1: जी जी
0: अभी बजा दिया था सलामी तो।
1: अच्छा चलो मैं दूसरा बोल देता हूँ क्योंकि थोड़ी लाइट नहीं थी। मैं अभी प्रोग्राम सुना था, मैं एक फिल्म बता देता हूँ दूसरी, क्योंकि एक फिल्म का बार बार गाना सुनना बोरिंग हो जाता है। तो फिल्म का नाम है साजन की बाहों में।
0: साजन की बाहों में?
1: जी
0: साजन, साजन की बाहू में।
1: जी जी जी जी जी
0: हाँ, साजन की बाहू में, हाँ मिल गया। कौन से गाना सुनना है?
1: इसमें एक गाना है कुमार सानू और अलका याग्निक के बाद में, मैं करती हूँ तुझसे प्यार, पास मुझे आने दे।
0: साजन की बाहू में?
1: हाँ जी जी जी
0: सदना सरगम का आवाज में होगा वो, या तो अलका का नहीं।
1: अच्छा सदना का, हाँ सदना का, हाँ
0: आपकी करीब ना।
1: हाँ आपके करीब हम रहते हैं अपना नसीब तुम्हें कहते हैं। और चलो सबसे पहले तो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ठीक है, कर दीजिए।
1: तो जैकब सर सबसे पहले तो आपको ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ओके थैंक यू।
1: तो पूरन वर्मा है राजस्थान जयपुर से, अविनाश तेली हैं, भगवान सिंह परमार हैं, दुर्गेश नागरपुरी हैं, राम नरेश कंजर है, रमेश प्रजापति हैं, और अम्मल बसमतारे और विमल हैं, और अंजित हैं, और तमाम

0: सुनने वाले श्रोता इन सभी के साथ ये गाना मैं सुनना चाहता हूँ और आप भी ये गाना और ये कार्यक्रम उम्मीद करता आज 1 बजे तक आएगा प्रोग्राम ये।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी तो ठीक है तो बाकी श्रोता भी खूब कॉल करे और धन्यवाद।
1: ओके धन्यवाद आपको भी। ओके
0: ओके ओके
1: वेल लिस्टनर्स का नीति होगी वो अपने लोग के कुमार शानू और सदना सरगम लगा वास्ते फिल्म से सज्जन की बाहू में।

0: मैं सर से बातें करूंगा और अपनी पसंद का गाना सुनूंगा, बड़ी देर से मैं ट्राई कर रहा था।
1: ओके, तो मिल गया अभी तो खुशी हो गया ना?
0: हाँ जी, बहुत खुशी हो रहा हूँ और मिल गया मेरा कॉल।
1: ओके जी, किसको डेडिकेट करना है ये गाना?
0: ये डेडिकेट रहेगा हमारे आकाशवाणी ग्रुप के जितने भी श्रोता मेंबर है ना,
1: ओके
0: सभी को डेडिकेट रहेगा। और हमारा ग्रुप बना हुआ हेलो शर्मा एकता ग्रुप, उसके भगवान सिंह शर्मा, लोकेंद्र वर्मा, तुकाराम यादव, आशुतोष अभिनय, संगीता जी कानपुर से, संगीता जी और डायकन मुंडा और रमेश टेलर, सुनील झा, इन सभी लोगों के लिए डेडिकेट रहेगा।
1: ओके, धन्यवाद आपको। ओके
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, मुझे आपसे पता
1: আপোনালোকে লতা মংগেশকৰ লগত ফিল্ম আছে পাকিজা।

0: हेलो।
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार नमस्कार।
1: मैं आशुतोष देवनाथ त्रिपुरा से बोल रहा हूँ।
0: ओके आशुतोष जी, बताइए कैसे आए आप।
1: अच्छा हूँ सर, और जब फूल लग जाता है और भी अच्छा हो जाता हूँ।
0: ओके बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, समय भी खत्म हो रहा है, तो आज कौन से फिल्म सुनने हैं?
1: तो सर जी, आज मुझे सुना दीजिए, 1986 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है अधिकार।
0: अधिकार
1: जी, राजेश खन्ना जी का फिल्म है।
0: अधिकार फिल्म, फिल्म मिलेगा ना नहीं मिलेगा देखेगा।
1: हाँ देखिए, अधिकार पुराना भी एक है 1971 का, तो 71 का नहीं चाहिए, 86 का चाहिए।
0: 71 का है, हम लोग को 86 का नहीं है।
1: 86 है नहीं तो नहीं, 71 नहीं तो दूसरा मैं बोल देता हूँ आपको, दूसरा फिल्म।
0: ओके
1: वो सात दिन।
0: वो सात दिन ना
1: जी,
0: वो सात दिन,
1: ये 1983 का फिल्म है।
0: ओके देखेगा। वो सात दिन तो हम लोग के पास नहीं है, हम लोग का इधर में लाइब्रेरी में।
1: आशा ज्योति,
0: आशा ज्योति,
1: आशा ज्योति, ये 1984 का फिल्म है।
0: आशा ज्योति, आशा ज्योति है, किंतु दो थू सिर्फ दो गाना है इधर में, नीली अंबर, नीली अंबर और महबूब से।
1: और एक आई पहले मिलन की रात है।
0: क्या बोला?
1: आई पहले मिलन की रात, इस फिल्म का गाना।
0: इस फिल्म आशा ज्योति फिल्म से।
1: आशा ज्योति से एक तो है मिले अंबर की दो लैना, और दूसरा है आई पहले मिलन की रात, ये है।
0: ये तो नहीं है, हमने बोला ना इसलिए नीले अंबर किशोर,
1: नीले अंबर के दो नैना किशोर दा की आवाजों में सुना दीजिए।
0: ठीक है।
1: और इस गाने को लिखा है मशहूर लिरिक्स आनंद बख्शी जी ने, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने सुर से सजाया है ना?
0: नहीं, अंजन है, लिरिक्स अंजन का है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है म्यूजिक।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं कुछ दोस्तों को याद करना चाहता हूँ। पहले आप सुनेंगे,
0: ओके।
1: सुनेंगे त्रिपुरा से मेरा प्यारा छोटा भैया अविनाश तेली, मध्य प्रदेश से प्रेम सिंह भैया,
0: ओके।
1: और सुनेंगे रमेश प्रजापति, भगवान सिंह परमार, और नेटवर्क का सारे सुझाव को लेकर सुनना।
0: ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ओके
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार। वेल प्रोग्राम शेष करने टाइम हुई थी, क्योंकि प्रोग्राम शेष थे होने वो किशोर कुमार लगा वास्ते फिल्म से आशा ज्योति और तो गीत लगे थे प्रोग्राम भी शेष कर हो, किंतु समय एक बजे हुआ लगे अपनी गान शुनिया हम एफ एम रेनबो रिले प्रोग्राम। सो मैं अपनी गान सबके विश कर से हेव ए वंडरफुल डे एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर योर फोन कॉल।

म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा

0: अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमा के राष्ट्रपति कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: He'll be meeting a prime minister and where both leaders.
2: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: This is official visit.
0: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटन्स IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वेलकम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। 1:05 हो चुके हैं और जब हम घड़ी में ये वक्त देखते हैं ना, तो क्या फील होता है? बिल्कुल फील होता है कि मेरा वाला सॉन्ग आने ही वाला है और कुछ ही पलों में बिल्कुल आपके वाला सॉन्ग आएगा। बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट हम यहाँ पर बिल्कुल प्ले करेंगे 9868107070, और बहुत सारे मैसेजेस बिल्कुल हम इंतज़ार कर रहे हैं उनका। बहुत सारी मतलब एक साथ इतनी सारी लोडिंग होती है मैसेजेस की। और फिलहाल जो पहला गीत हम निकाल रहे हैं, अभी फिलहाल मौसम में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत राहत की अब उम्मीद सी लगी है और ठंडी ठंडी हवा लग रही है, लेकिन जो अभी फिलहाल मौसम बना हुआ था और आने वाला मौसम भी ऐसे ही लगने वाला है आपको, इसलिए खास ख्याल रखना है आपको और धूप से बचना है और ख़ास तौर पर जो लू चल रही है ना उससे आपको बहुत बचाव रखना है। पानी का उपयोग लगातार करते चले जाइए और बिल्कुल साथ में एक पानी की बॉटल रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे मौसम में। लेकिन अभी फ़िलहाल मौसम ठीक ठाक बना हुआ है, घूमने वाला मौसम है, तो इसलिए घूमिए फिर भी, छुट्टियाँ भी आपका साथ दे रही हैं। फिलहाल आशुतोष आपके साथ जुड़ चुका है मेरा वाला सॉन्ग में, आपकी रिक्वेस्ट हम यहाँ पर ज़रूर प्ले करेंगे, आप हमें जल्दी से मैसेज भेजिए। और फिलहाल ये ट्रैक निकल रहा है कूली नंबर 1 से, बिल्कुल आपका फेवरेट गाना होगा बिल्कुल यकीन मानता।

जुड़े हमारे साथ और रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने गाने की। बिल्कुल हम प्ले करेंगे आपके लिए गाना फिल्म क्रिमिनल से तुम मिले दिल के लिए। और जीने को क्या चाहिए, क्या बात है, तो आप मिलते हैं तो हम भी क्या चाहिए जीने को, बिल्कुल हमारा सब कुछ हासिल हो जाता है। और हितेंद्र दास भी इस वक्त हमारे साथ असम से कनेक्टेड है, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से कनेक्टेड है और साथ ही साथ सलीम अख्तर रेशमा बेगम अलीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड। गुड आफ्टरनून भेज रहे, थैंक यू सो मच। सोनिया विहार से कंचन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और साथ ही साथ भगवती भी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से इस वक्त हमें सुन रहे हैं, मनमोहन सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल इस वक्त और सुन रहे हैं हमें हमारा शो। और फिलहाल बस आप भी कनेक्ट रहिए हमारे साथ। और मनमोहन सिंह इस वक्त रामपुर से कनेक्टेड हैं और प्रोग्राम बिल्कुल आप ही का अपना है, मेरा वाला सॉन्ग। और यहाँ पर आपको बस अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट करनी है, फिल्म का नाम बताना है, गाने के बोल बताने हैं, सिंगर का नाम बताना है और उसके बाद इसको भेज देना है 9868107070 पर। मौसम बहुत आसान है, इसको एंजॉय करते रहिए हमारे साथ, वीकेंड को और भी अमेजिंग बनाते चले जाइए हमारे साथ मेरा वाला सॉन्ग में।

और जब हमें आप की मुलाकात हो जाती है हमारी आपके साथ, तो हमें और क्या चाहिए होता है। किशन वाजनानी इस वक्त रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कांड से मोहम्मद फुरखान इस वक्त गुड आफ्टरनून भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। और शालू इस वक्त शादीपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू। और एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है और ये है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। प्लीज़ जब भी आप रिक्वेस्ट भेजें तो नाम जरूर मैंशन कीजिए। वरुण वार्षण इस वक्त अलीगढ़ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ अजीत कुमार समस्तीपुर बिहार से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अनिता वर्मा पीतमपुरा से कनेक्टेड हैं। और बिल्कुल आपकी हम चॉइस का गाना जरूर प्ले करेंगे, सेठियुंड हमारे साथ जुड़े रहिए। मर्डर फिल्म से आ रहा है दिल को हजार पर रोका रोका रोका, लेकिन आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आप लगातार हमारे पास अपनी रिक्वेस्ट भेजते चले जाइए। आपका गाना भी हो सकता है अगला गाना जो हम आपके लिए प्ले कर पाए। और फिलहाल अमन कुमार भी इस वक्त बागपत यूपी से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप भी कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ और आपका गाना भी बन सकता है, आपका गाना भी तमाम लोग सुन सकते हैं जो आप रिक्वेस्ट करेंगे। फिलहाल सुनते रहिए मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन।
6: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

बिल्कुल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग। और बिल्कुल हमारे पास इतने अमेजिंग मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे तमाम लोगों के मैसेज आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। रंजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मुकुंदपुर दिल्ली से और रिक्वेस्ट भेज रहे हैं हमारे पास। और साथ ही साथ एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है सोलापुर से, और ये श्री कृष्ण बंसोड़े इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सोनाली भी उनके साथ हैं, श्रवण भी उनके साथ सुन रहे हैं हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। और कमला रानी और गीतिका भानु इस वक्त उत्तम नगर दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और उनके साथ हैं बोधराज खोरवाल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सौरभ अनरजा भी इस वक्त गाजियाबाद से कनेक्टेड हैं, रिक्वेस्ट नहीं भेजिए कोई लेकिन प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और नीलेश पवार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और नासिक में ट्रैवल कर रहे हैं और गाने हमारे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और अपने पसंद के गाने आपको सुनने को मिल जाए तो और उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और अगर आप अपने रिक्वेस्ट वाले गाने प्ले कर रहे हैं और वही वाला गाना आपका बज जाए तो और उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फिलहाल इस गाने को सुनिए और सुनते रहिए मेरा वाला सॉन्ग आशुतोष के साथ।

बिल्कुल, आप भी हमें बस ऐसे ना देखिए, बस सुनते चले जाइए और हमारे साथ अपने गाने गुनगुनाते चले जाइए, क्योंकि हम आप ही के गाने एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आपके साथ मिलकर। और फिलहाल हमारे पास एक और मैसेज है, देवेंद्र इस वक्त हमारे साथ करबी आंगलोंग असम से कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दूर से हमें मैसेज भेजने के लिए। नरेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और साथ ही साथ अल्फिया खान, आयन खान और गुलफान खान इस वक्त हमारे साथ शाहदरा से कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है, सोनिया विहार से कंचन इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, शैलेंद्र वर्मा भी इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ और प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। और एक और मैसेज है, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, और एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है नोखेलाल वर्मा का, और ये हमारे साथ कनेक्टेड हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ यूँ कनेक्ट रहने के लिए। नतेंद्र घोष इस वक्त हमारे साथ छतरपुर एमपी से कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी और लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और ये बलबीर सिंह, और ये हैं मुरादाबाद से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है भोपाल से, राम बाबू मालवीय, मनीषा मालविया, और ये दोनों हमारे साथ कनेक्टेड हैं, कभी बहुत बहुत शुक्रिया कनेक्ट होने के लिए हमारे साथ। और फिलहाल एक और अमेजिंग ट्रैक आप ही के रिक्वेस्ट का निकल रहा है, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपके गाने यहाँ पर हम प्ले करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिल के भी बहुत करीब होते हैं। फिलहाल आपके इस गाने के माध्यम से हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और कहीं ना कहीं चांद के दीदार कर रहे हैं आपके माध्यम से। फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए मेरा वाला सॉन्ग, अपने गाने की रिक्वेस्ट करते जाइए 9868107070। और मैं हूँ आशुतोष आपके साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

क्या बात है, पुरानी यादें ताज़ा कर दी आपने इस गीत के माध्यम से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ये गाना आपने रिक्वेस्ट किया। और बस तमाम हमारे साथ जो श्रोतागण हैं वो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुनीता शर्मा इस वक्त शालीमार बाग से कनेक्टेड हैं और हमारे सुन रही हैं, हमारे प्रोग्राम को सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ एक और मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, और पंकज इस वक्त महाराष्ट्र से प्लेलिस्ट का बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और बिल्कुल ये आप ही के जो हमारे श्रोतागण हैं उन्हीं की रिक्वेस्ट है, उन्हीं की प्लेलिस्ट है, और उनके गाने तो बेमिसाल होने ही है। जब हम उनके प्लेलिस्ट बजाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें। कविता देवभूमि उत्तराखंड से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और रंजीत मस्ताना रायबरेली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप भी। और मेघा सिंह इस वक्त हमारे साथ बिहार से कनेक्टेड हैं, और एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है, और ये है कोलार रोड भोपाल से बिल्कुल राम बाबू मालवीय जी, और थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उपदेश शर्मा, रोहित धीरज और ये हमारे साथ जुड़े हैं किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर से, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दूर से हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। मौसम बहुत अच्छा होगा आपके यहाँ पर बिल्कुल, और वो थोड़ा सा ठंडक हमारे यहाँ भी पहुँचा दीजिए, बस यही दुआ करते हैं हम भी। और साथ ही साथ एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है आदिल कमर और ये तकदीस अली और मुजफ्फर अली इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं और आदाब अर्ज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही कनेक्ट रहिए हमारे साथ, और हम भी ये वादा करते हैं कि आपसे आपका गाना जरूर प्ले करेंगे। फिलहाल ये गीत खास आप ही की पसंद का हम निकाल रहे हैं आकाशवाणी के स्टूडियो से। फिलहाल कनेक्ट रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए मेरा वाला सॉन्ग। और बिल्कुल एक और अमेजिंग मैसेज हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, बस इस गीत के बाद दोबारा से शामिल करूंगा।

बुल और सैटरडे आफ्टरनून में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मोहम्मद फुरकान इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है जनकपुरी से। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सलूजा जी कनेक्टेड हैं। बहुत शुक्रिया आपका। शुरू में पहचान नहीं पाते लेकिन अब पहचान लिया। थैंक यू सो मच। बस आपका आशीर्वाद है। थैंक यू। और इस वक्त एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है अहमदाबाद से। ये हमारे साथ सावन लाल इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विजय कुमार कामत इस वक्त शालमार बाग से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है। और एक और मैसेज है इकबाल राय गुलाटी जी और तुषार गुलाटी जी का, इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है कुरुक्षेत्र से। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ अगर आप हमारे साथ अब तक शामिल नहीं हुए। और मोहम्मद इम्तियाज इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं जवाहर कैंप से, और साथ में उनके साथ हैं सलमा बेगम, अब्दुल राशिद और सभी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और एक और मैसेज है राजेश कुमार, मनीष कुमार, उमेश कुमार और ख्याला विष्णु गार्डन से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बस आप ही का फेवरेट गाना निकाल रहे हैं आकाशवाणी के स्टूडियो से। फिलहाल इस गीत के बाद बिल्कुल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लूंगा और उसके बाद आपके गाने फिर से शामिल करेंगे। नंबर है हमारा 9868107070। इसी नंबर पे जल्दी से अपने गाने के बोल, मूवी का नाम, सिंगर का नाम या फिर एक्टर का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा अपने नाम के साथ में, और हम उस गीत को प्ले करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

बिल्कुल, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग। और इस वक्त जर्मनी से सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं और ईला भी इस वक्त उनके साथ जुड़ी हैं और शुभ एंजॉय कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतने दूर से हमें मैसेज भेजने के लिए। और साथ ही साथ मनोज कुमार, अंजलि कुमारी और हिमांशी कुमारी और प्रियांशी कुमारी इस वक्त संत नगर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं और शो को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ अंकित कुमार इस वक्त देवघर झारखंड से कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है अमन कुमार का बागपत से, और एक और ज़बरदस्त मैसेज हमारे पास आ रहा है, जय हिंद भेज रहे हैं, और ये हैं सोनम अरोड़ा और राधा शर्मा इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से कनेक्टेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए। और एक और मैसेज हमारे पास मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, और जोया इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और एक और मैसेज ये है, कहाँ से बात कर रहे हैं, ये हैं कीमती कान, और ये हमारे साथ जुड़े हैं लेकिन उन्होंने अपने कटक से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और नमस्ते भेज रहे हैं हमारे पास सोमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार, सुनीत कुमार, और ये ख्याला से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। उत्तम नगर से भी हमारे पास मैसेज आ रहा है, और जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। फरुखाबाद से भी इस वक्त हमारे पास हरकैन सिंह का मैसेज हमारे पास आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉली भी इस वक्त दिल्ली से कनेक्टेड हैं और शो एंजॉय कर रही हैं, बहुत गाने अच्छे लग रहे हैं उनको, मेलोडीज ट्रैक लग रहे हैं सारे। बस हमारे लिसनर्स हैं उन सभी की रिक्वेस्ट हम प्ले कर रहे हैं, और बस वो तो अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जब हम मिलकर एक दूसरे की पार्टी एंजॉय करते हैं ना, तो ये पार्टी एक अमेजिंग पार्टी बन जाती है। फिलहाल इसराइल से भी इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार कनेक्टेड हैं हमारे साथ, और नमस्कार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये उन्नाव से कनेक्टेड हैं और उन्नाव से ताल्लुक रखते हैं लेकिन अभी फिलहाल इसराइल में रह रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और बस अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और आगे बातचीत कंटिन्यू करें, लेकिन जाते जाते आपके लिए एक और अमेजिंग ट्रैक आप ही की चॉइस का हम निकाल रहे हैं यहाँ पर खास आपके लिए। और इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हम अकेले हैं और आप भी अकेले हैं, लेकिन हम जब दोनों साथ मिलते हैं तो हम अपनी इस कंपनी को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पूरे एक घंटे हमने अपनी कंपनी को एंजॉय किया और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। फिलहाल आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, और इसके साथ ऐसे ही अपनी धुन को और भी सुंदर बनाते चले जाइए।

हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना। मैं हूं सायम आपके साथ, और इस वक्त आकाशवाणी रेनबो पर ना बहुत सारी कहते हैं ना बातें प्रोग्राम आशियाना के जरिए जब आपके साथ होती है ना, आपके आशियाने से जुड़ी बातें, आपके अपनों से जुड़ी बातें, क्या कुछ है आज इस प्रोग्राम में खास बातें होंगी। लेकिन खूबसूरत गानों का सफर लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, मैं हूं सायमा आपके साथ। और सीरियसली जब आपके अपने आशियाने से जुड़ी बातें होती हैं, और कहते हैं ना कि घर एक ऐसी जगह है जो बनाएं तो बेहद खूबसूरत, ख्याल रखें तो और ज़्यादा खूबसूरत, और जहां अपनों का ख्याल रखा जाए, और ख़ास कर इस गर्मी में, क्योंकि गर्मी बे इंतहा है, बड़ी शिद्दत वाली गर्मी है, और इसमें बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। और ये कुछ जो दिन है, अभी 2-4 दिन ये कुछ हल्का फुल्का मौसम अप डाउन इसमें देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। डिहाइड्रेशन लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अपने आप को हाइड्रेट रखिए बिल्कुल। और लगातार कहते हैं ना कि अपने आप को तभी बाहर निकालिए जब आपको बेहद ज़रूरी काम है, बिना किसी काम के बाहर नहीं जाइए, क्योंकि गर्मी बेहद ज़्यादा बढ़ी हुई है इस वक्त में। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी। और कहते हैं ना, गर्मी हो और आइसक्रीम का मज़ा ना लिया जाए, ऐसे भला कैसे हो सकता है। फिलहाल आपका जो फ्रिज है ना, वो आइसक्रीम बड़े संभाल के रखता है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है। वो कौन सी बातें हैं बताऊँगी आपको। लेकिन कहते हैं ना कि जब आकाशवाणी रेनबो हो और खूबसूरत गानों का सफर ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। एक ही प्यारा सा साउंड ट्रैक और आपके लिए, कहीं मत जाइए, बने रहिए प्रोग्राम आशियाना में। मैं हूं सायमा आपके साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मैं हूं सैमा आपके साथ। इस वक्त चल रहा है आपका अपना प्रोग्राम आशियाना, और आशियाना में जुड़ी बातें आपके अपनों से, आपके घर से, आपके जो खास हैं उनसे। और कहते हैं ना कि ऐसी गर्मी में, अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, आइसक्रीम ना हो भला ऐसे कैसे हो सकता है, आइसक्रीम का मज़ा ना लिया जाए ऐसे कैसे हो सकता है, होता है ना कई बार। और कई बार हम क्या करते हैं कि जो आइसक्रीम्स होती हैं ना, उनको घर में ला के संभाल के फ्रीज़र में रख देते हैं। और कई बार होता क्या है कि हम ये नहीं सोचते कि ये हमने संभाल के रखी तो है, फिलहाल इसकी डेट कहीं निकल तो नहीं, कहीं एक्सपायरी तो नहीं हो गई। और कुछ ऐसी बातें जो बेहद ख़ास ध्यान में रखने वाली होती हैं वो ये कि जब आइसक्रीम आप एक बार रख देते हैं तो उसको जितना जल्दी हो जाए, अगर आपने आइसक्रीम खोल के रखा है तो उसको जितना जल्दी हो सके उसको कंज्यूम कर लेना बेहतर होता है। क्योंकि उसके कहते हैं ना कि जब कोई भी अगर पैकेज्ड फूड है या आइसक्रीम है, जब एक बार खुल आता है तो उसको ज़्यादा देर तक फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। उसके साथ साथ जो आपकी एक्सपायरी डेट्स हैं उनका बेहद ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। और कई बार होता है कि निकाल कर रख लेते हैं आइसक्रीम और फिर सोचते हैं कि नहीं भाई अब तो कुछ और दिन चल जाएगा, लेकिन सही जो तापमान है जिसमें आपने आइसक्रीम रेफ्रिजरेट करी है वो भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपने नॉर्मल आइसक्रीम ऐसी ही फ्रिज में रख दी तो उसका जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो कहीं कुछ हद तक ख़राब होने का डर रहता है। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं ना, इन चीज़ों का ख्याल रखने की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि आपकी जो अपनी सेहत है ना, आपकी सेहत, आपके अपनों की जो सेहत है वो बेहद ख़ास होती है। ज़रा हल्की सी सेहत गड़बड़ाई और फिर क्या, फिर तो बस परेशानी ही परेशानी। तो ऐसे में अपना ख्याल रखना और अपने जो ख़ास हैं, घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। फ़िलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी और खूबसूरत गानों का सफ़र भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों?

0: अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

एक छोटे से ब्रेक के बाद सैमा फिर आपके साथ, और इस वक्त चल रहा है आपका अपना प्रोग्राम आशियाना। आशियाना में क्या कुछ है ख़ास? फ़िलहाल आजकल गर्मी का जो कहर कहा जाए ना, वो बेहद सर चढ़ के बोल रहा है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पहले भी बताया था, अभी फिर एक बार बता रही हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा ख्याल अपना रखा जाए उतना बेहद ज़रूरी। और बढ़ते तापमान में, यानी कि जो टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है ना, इसमें क्या कुछ ख़ास बातों का ध्यान रख सकते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आपको लू लगती है ना, तो ऐसे में तबीयत का ख़राब होना, भूख नहीं लगना और आलस महसूस होना, चिड़चिड़ापन, और ये जो गर्मी की वजह से जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं ना, इनसे बचने के लिए बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी है हाइड्रेशन। गर्मी में सबसे पहले हाइड्रेशन मेंटेन रखने की सलाह दी जाती है। और क्या आप जानते हैं, पसीने के साथ बॉडी से ना सोडियम और पोटेशियम जैसी मिनरल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं। और ऐसे वक्त में अगर आप फौरन से बॉडी हाइड्रेट नहीं करते हैं, तो सिर में दर्द, और क्योंकि जब आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, तो साथ साथ वाटर इनटेक करना बेहद ज़रूरी होता है। और अगर ऐसा नहीं करते हम स्वेटिंग के साथ साथ, अगर पानी का इंटेक नहीं बढ़ाते हैं, तो सिर में दर्द और मसल्स में खिंचाव, चक्कर आना, उल्टी होना या कमजोरी भी महसूस होने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए

कभी भी खुले में मत खाइए, क्योंकि खुले में खाने से फ्रूट्स जो बाहर हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर कटे हुए फ्रूट्स रखे हैं, कुछ तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमेशा हम ध्यान में रखते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार हम अनदेखी कर देते हैं इन चीज़ों की, है ना। तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखने की खास ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी का जो इतना ज़्यादा अभी हम असर देख रहे हैं, लोग बागों को डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, लू भी लग रही है, तो अपने आप को ख़ास करके संभाल के रखने की ज़रूरत है। और डाइट में मैग्नीशियम वगैरह कहते हैं ना कि जो आपका डाइट होता है वही आपको बहुत हद तक संभाल के रखता है, तो अपनी डाइट का बेहद ख़ास ख्याल रखिए और जितना हो सके धूप से बचें, और साथ में कहीं कुछ लगता है तो फौरन डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि डॉक्टर की सलाह लेना ना बहुत ज़रूरी होता है। घर में हम छोटे मोटे जो कहते हैं ना कि हम ट्रीटमेंट्स ले लेते हैं, उपचार कर लेते हैं, वो उनका ठीक है, बहुत हद तक घर में चीज़ें चलती हैं, बट फॉरेन डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी भी होता है। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, खूबसूरत गानों का सफ़र भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मैं हूं सायमा आपके साथ। और कहते हैं ना कि बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, लेकिन अब बात अगर करें बागवानी की यानी कि गार्डनिंग की, तो गार्डनिंग ऐसे मौसम में अपने घर को हरा भरा देखना कितना अच्छा लगता है ना। और गार्डनिंग की अगर बात की जाए, हरियाली और उसमें थोड़ा सा वक्त बिताना, थोड़े से दिमाग और दिल को सुकून देना, और जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक़ होता है वो बेहद बखूबी कहते हैं ना कि जान सकते हैं कि जब गार्डनिंग की आती है, पौधों को लगाया जाता है, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताया जाता है। और कहते हैं ना कि जब छोटे छोटे से चीज़ें जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वक्त बहुत आसानी से निकल जाता है। अब गार्डनिंग में आप किस तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, कई बार जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो भी जो गार्डनर्स होते हैं ना, यानी कि जो बागवानी करना पसंद करते हैं, वो अपने घर को सजाने के लिए वेस्ट मटेरियल्स का भी बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। और कहते हैं ना कि घर में छोटे मोटे जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, आप उनसे आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क करके और गार्डनिंग को बखूबी अपनी खूबसूरती, कहते हैं ना गार्डन की खूबसूरती का हिस्सा बना सकते हैं। इसके साथ साथ कहीं घर में छोटे मोटे टायर

पड़े हो या टूटा फूटा कोई मटका पड़ा हो, कुछ मिट्टी का बर्तन पड़ा हो या कुछ कप पड़े हो, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, जब हमें करने में मज़ा आने लगता है, गार्डनिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट का भी जिन्हें शौक होता है या हम करके देख सकते हैं, तो सच में वक्त कैसे बीत जाता है मालूम ही नहीं चलता। और कहते हैं ना कि खूबसूरती की खूबसूरती, हरियाली की हरियाली, और दिल दिमाग को जो सुकून मिलता है गार्डनिंग करके, वो तो कहना ही क्या। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी। और मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मुझे तो वाकई में गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती है। साथ साथ जो हमारे दोस्त भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और अगर गार्डनिंग करते हैं, तो वो बेहद ख़ास तरीके से अपनी गार्डन को सजाते होंगे, संवारते होंगे। ये हम कहते हैं ना कि जब हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने गार्डन को खूबसूरत करना चाहते हैं, वक्त उसमें दिया जाता है, और वक्त के साथ साथ जब वो खूबसूरती निकल के आती है हरियाली के साथ में, तो वाकई में बहुत दिल को सुकून देती है। फिलहाल एक और प्यारा सा गाना आपके लिए, कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्च, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
7: ठीक है?
6: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
4: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
8: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
4: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
5: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
4: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
5: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
4: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
5: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
4: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
5: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

बेहद खूबसूरत गाना भी आपने सुना आकाशवाणी रेनबो पर। अब यहाँ सायमा को दीजिए इजाजत क्योंकि बबीता आ गई हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर लेकर के, और उम्मीद है आप इस प्रोग्राम को बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पर एक प्यारे से गाने के साथ आपको छोड़ जाती हूँ और फिर मिलूंगी आपसे 4 से 5, कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर। तब तक रखिए अपना ख्याल।

0: FM 드래곤밴 News, Music and Entertainment FM 103MHz
1: 금츠노짜기 이니로 HIV and AIDS 예자 카이토니키네네 지그진 콜로 HIV 그스미 수쇼 and 바나치피 우진기요 아니
2: 아이즈 히퍼 콜로 아금라로 숙스 아기르티 아시즈 두처큐 앤 그다음 시금라로 가콜로 HIV 그스미 주크나타 앤 코탈리타 문교아니
1: 닝우 곡타 렉타 가하큐 예 카시 케니노로
2: 아사이 보이 나갈린 스테이트 에이즈 컨트롤 소사이티 베조 농라우 서자니
3: ingadawa HIV elani AIDS danglan chi shikwa azan zo thungini si taro dingji yakchia HIV no chonori na kathako gyonjang elan usi khamjo shanjo piawana
4: shiku shi yakchia HIV no chonori cho gyonjang kabini lichobeni osi okho walai lanlo chakungo nga sung gyojang khanala
3: chakdang gungda nlina wandaw kalo
4: nchi janda shangjo Naglin State AIDS Control Society yakchiam de piala
5: Mete gore ni de HIV mu AIDS prevention mu control act de jene kana mu great na ti je tejo HIV mu ka mu khuk ba ko yo ke da na khasa
6: ku yo tejo yo ba hori thok phul ha se ku phul se ro pe ko to da ro je ko le mori matro choyi ki thi the thi ko le la tre mori me shu tre ka ta ko khai ko to la thi se
5: suna u ko te ke mo che zu pe thi ke
6: je hi ko Nagaland State AIDS Control Society che jo mu se si yo
0: FM Dragon Band
7: 103 MHz
0: News, Music and Entertainment
7: This is FM Dragon Band
0: FM 103 MHz
8: यात्रीगण कृपया ध्यान दें आपकी एफएम ट्रैगोबैंड की म्यूजिकल एक्सप्रेस एक बार फिर से हिंदी फिल्मी गीत एसएमएस रिक्वेस्ट शो की मजेदार उड़ान के लिए तैयार है तो साहिबान कदरदान मेहरबान अपनी कुर्सी की पेटी एक बार फिर से कस के बांध लीजिए और दिल के कोने में छुपे लम्हों को जगा लीजिए और रेडियो का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि ये वादा है आपसे ये फुल पैकेज है आपको हमारी तरफ से न कोई कमी हो हमसे ये पूरी कोशिश है हमारी तरफ से बस गुड वाइब्स नो लाइज Great tunes, no films, just entertainment, entertainment or entertainment. And इस musical सफर की pilot कर रही हूँ मैं आपकी वही सीधी सारी पुरानी वाली दोस्त पुरानी वाली यार आपके अपना रेडियो बादी आरजे कैनी ऑन द माइक तो इस फिल्मी गीत बॉलीवुड के फिल्मी गीत एसएमएस रिक्वेस्ट शो को शुरू करते हैं एंड स्वैग से स्वागत करते हैं आप सभी का

और दोस्तों क्योंकि ये है आपका SMS रिक्वेस्ट शो, तो इस सफर के को पायलट्स आप भी हैं। जी हाँ, अगर कोई फेवरेट गाना सुनना चाहते हैं, कोई पुरानी याद ताज़ा करनी चाहते हैं, किसी खास दोस्त, फैमिली मेंबर्स या दिल के करीब इंसान को एक गीत डेडिकेट करना है, या कोई प्यारा सा मैसेज पहुंचाना चाहता है, तो ये सही वक्त है। हमें बस SMS कीजिए 9436805333 पर। आपने मैसेजेस में लिखे गाने का नाम, टाइटल, फिल्म का नाम, और अगर किसी को डेडिकेट करना हो, कोई मैसेज हो, तो वो भी लिखकर भेज दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैसेजेस का इंतजार रहेगा, तब तक मिलके सुनते हैं ये गीत।

0: सबका स्वागत।
1: हां जी दोस्तों, स्वैग से सबका स्वागत कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एसएमएस रिक्वेस्ट शो। बजाता है पहला गीत, जिसको रिक्वेस्ट किया है हमारे दोस्त कोहिमा से रोजलिन ने। और रोजलिन ने एक प्यारा सा रिक्वेस्ट किया है यहाँ पे सैयारा फिल्म, जो रिलीज हुआ था 2025 में। फिल्म से जो गीत उन्होंने रिक्वेस्ट किया है वो गाया है विशाल मिश्रा, राजशेखर एंड हंसिका परीख ने। म्यूजिक दिया है विशाल मिश्रा ने, लिरिक्स है वो लिखा है राजशेखर ने। गीत का नाम है तुम हो तो। तो चलिए रोजलिन, सुनते हैं आपका यह रिक्वेस्ट किया हुआ गीत तुम हो तो। जुड़ी रहे हमारे साथ और एंजॉय कीजिए।

दिल को सुकून सा मिल जाता है जब हर लम्हा खूबसूरत लगने लगता है। दिल को सुकून सा मिल जाता है जब हर लम्हा खूबसूरत लगने लगता है। मुस्कुराहट भी वजह ढूंढ लेते हैं, ख्वाब भी रंग भरने लगता है और फिर हर एहसास कह उठता है तुम हो तो। जी हाँ दोस्तों, एक प्यारा सा गीत सैयारा फिल्म से अभी हमने सुना है और अभी हम बैठे हैं अगले रिक्वेस्ट की तरफ, जिसको रिक्वेस्ट किया है निमादी बॉय और निमादी गर्ल ने। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है मूवी साजन के फिल्म से, 1991 के फिल्म साजन से, अलका याग्निक जी की आवाज़ में तू शायर है मैं तेरी शायरी, जिसका म्यूजिक दिया है नदीम श्रावण ने, लिरिक्स लिखा है समीर दा ने। मुझे ये गीत बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इस गीत के बोल बहुत ही खूबसूरत है। तो निमारी बॉय निमारी गर्ल, शुक्रिया इस प्यारा सा गीत को रिक्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलके सुनते हैं तू शायर है मैं तेरी शायरी।

अल्फाजों में कभी जज्बात सच जाते हैं, दिल के राज भी नज़मों में ढल जाते हैं। अल्फाजों में कभी जज्बात सच जाते हैं, दिल के राज भी नज़मों में ढल जाते हैं। और हर एहसास को एक आवाज से मिल जाती है, खामोश भी कहानी बन जाती है। और फिर दिल कह उठता है, तू शायर है और मैं तेरी शायरी। जी हाँ दोस्तों, एक प्यारा सा गीत साजन की फिल्म से अभी हमने सुना है। तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला रिक्वेस्ट, जिसे भेजा है अतोली फ्रॉम लजामी से। कहते हैं वो सुनना चाहते हैं यादों की बारात के टाइटल ट्रैक, एंड लता मंगेशकर जी के आवाज़ में थे ये गीत। लता मंगेशकर, पद्मिनी, शिवांगी और कॉरस में है ये गीत। तो अतोली फ्रॉम लजामी, शुक्रिया आपके रिक्वेस्ट के लिए। और अभी जो है हम बजाने वाले हैं 1973 के यादों की बारात का टाइटल ट्रैक, जिसका म्यूजिक दिया है आरडी बर्मन जी ने, लिरिक्स लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने। तो चलिए मिलकर सुनते हैं द टाइटल ट्रैक ऑफ यादों की बारात।

कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती, वक्त के साथ भी धुंधली नहीं होती। कुछ वादे कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती, वक्त के साथ भी धुंधली नहीं होती। हर लम्हा दिल में बसा रहता है, हर याद अपनी कहानी कहती है, और फिर सच जाती है यादों की बारात। जी हाँ दोस्तों, वो था यादों की बारात फिल्म के टाइटल ट्रैक। एंड द नेक्स्ट गीत जो अभी हम सुनने वाला है, हम बजाने वाले हैं 1982 की फिल्म नमक हलाल से, जिसका आवाज दिया है आशा भोसले जी ने, म्यूजिक जो है वो दिया है बप्पी लहरी जी, लिरिक्स लिखा है अनजान ने। एंड ये गीत का नाम है जवाने जानी मन, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड इस गीत को रिक्वेस्ट किया है हमारे दोस्त बली पत्थर से, रोमन हंसे एंड करेंग पंग चोपी ने रिक्वेस्ट किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रोमन एंड करेंग जी, आप दोनों ने एक प्यारा सा गीत रिक्वेस्ट किया है जो बहुत हिट था 1980s में। तो चलिए हम अभी मिलके सुनते हैं ये गीत जवानी जानी मन।

हर पल में थोड़ी सी मस्ती होनी चाहिए, हर महफिल में थोड़ी सी हंसी होनी चाहिए। हर पल में थोड़ी सी मस्ती होनी चाहिए, हर महफिल में थोड़ी सी हंसी होनी चाहिए। जिंदगी का सफर हल्का सा मुस्कुराए, दिल भी कभी बेफिक्रे हो जाए, और फिर हर आवाज कहते हैं जवाने जानी मन। वेल जी हाँ दोस्तों, नमक हलाल के फिल्म से हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड सुनते हैं अगला ट्रैक जो बजाने वाला है हम 1989 के फिल्म मैंने प्यार किया से, जिसका आवाज दिया है लता मंगेशकर जी ने। इस फिल्म में ये गीत मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड ये गीत जो है, मेरे पास दो वर्जन है, एक जो है वो गाया है एसपी बाला सुब्रमण्यम जी ने, दूसरा वाला है लता मंगेशकर जी ने। तो आज मैं बजाने वाला हूँ लता मंगेशकर जी की आवाज में ये प्यारा सा गीत दिल दीवाना, जिसका म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत ने, लिरिक्स लिखा है देव खोली ने, एंड इस गीत को रिक्वेस्ट किया है दुर्गेश जी एंड परिवार ने। उनके नाम है दुर्गेश नगनपुरी, राधेश्याम नगनपुरी, वंदना भावना, बिंदु गोलू, कुसुम भाई, बाबू दिव्यांशु, सूरज कुमार दक्षे, सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममता भाई वर्मा जी ने। तो शुक्रिया आप सभी को इस प्यारा सा गीत रिक्वेस्ट करने के लिए मेरी तरफ से।

पहली सी खुशी दिल को छू जाती है, हर बात में एक नया एहसास आ जाता है। पहली सी खुशी दिल को छू जाता है और हर बात में एक नया एहसास आ जाता है। मुस्कुराहट की वजह मिल जाती है, ख्वाबों को भी पंख लग जाती है और फिर हर धड़कन कहना चाहते हैं दिल दीवाना। वेल जी हाँ दोस्तों, वो था मैंने प्यार किया के फिल्म से अभी हमने सुना है दिल दीवाना। एंड अभी जो है हमारे हाथ में बचा है सिर्फ 20 मिनट एंड मैसेजेस जो है रिक्वेस्ट मैसेजेस ढेर सारे आया हुआ है। इन अदर वर्ड्स कहा जाए तो मैसेजेस का बौछार हो रहा है यहाँ पे, तो जल्दी से हम नेक्स्ट रिक्वेस्ट लेते हैं। लेकिन उससे ये रिक्वेस्ट लेने से पहले एक रिमाइंडर आप सभी को दैट 7 बजने पर आपको दिया जाएगा कार्यक्रम उरा एकेडमी, जो है एक स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम। तो जुड़ी रही है इस कार्यक्रम के लिए भी, 10 मिनट का कार्यक्रम है, 7 बजने पर आपको ये कार्यक्रम दिया जाएगा। एंड जी हाँ अभी के लिए बस इतना ही। चलो दोस्तों मिलके सुनते हैं अगला रिक्वेस्ट किया हुआ गीत। 1999 के फिल्म से रिक्वेस्ट किया है, गीत का नाम है फिल्म का नाम है सिलसिला है प्यार का, गीत का नाम है ये सिलसिला है प्यार का, जी हाँ टाइटल ट्रैक है, जिसको गाए हैं अलका याग्निक एंड कुमार सानुदानी, म्यूजिक दिया है जतिन ललित, लिरिक्स लिखा है समीर दाने। एंड ये प्यारा सा गीत रिक्वेस्ट किया है हमारे दोस्त सशिन लो रेंगमा कर्बी अंगलोंग से, उन्होंने डेडिकेट किया है टू वन एंड ऑल द लिसनर्स, लास्टली टू दोस्त हु लव दिस सॉन्ग लेट them enjoy it. Well, Sasin Lo, that's such a thoughtful request with a dedication. तो बिना कोई वक्त जाया किए चलिए हम मिलके सुनते हैं ये गीत, ये सिलसिला है प्यार का।

प्यार की राहों में हर सफर चलता रहता है, हर लम्हा एक नया एहसास देता है। प्यार की राहों के सफर में चलता रहता है, हर लम्हों के नया एक सफर देता रहता है। कभी मुस्कुराहट कभी खामोशी साथ रहती है, हर याद दिल के करीब रहती है, और यूं ही चलता रहता है ये सिलसिला प्यार का। वेल जी हाँ दोस्तों, वो था ये सिलसिला है प्यार का, टाइटल ट्रैक आपने सुना है। एंड अभी जो है हम बढ़ते हैं अगला रिक्वेस्ट की तरफ, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट। एंड ये रिक्वेस्ट जो है वो हम सुनने वाला है हम तुम के फिल्म का टाइटल ट्रैक, जी हाँ दोस्तों, जिसको गाया है बाबू सुप्रियो और अलका याग्निक जी ने, म्यूजिक दिया है जतिन ललित, एंड लिरिक्स जो है वो लिखा है प्रसून जोशी ने। एक बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही रोमांटिक सा गीत है, मुझे बहुत ही पसंद है, और ये गीत जो है वो रिक्वेस्ट किया है हमारे दोस्त रमेश बाबू जी ने। जी हाँ दोस्तों, और मैसेज लिखते हैं, कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की कोशिश में लग जाती है। फॉर माई पारू फ्रॉम रमेश बाबू, एंड द सॉन्ग हम तुम के टाइटल ट्रैक बजा दीजिए, कि ऐसा लिखकर भेजा है हमारे दोस्त रमेश बाबू ने। तो वेल वेल वेल रमेश बाबू, आपका ये प्यारा सा रिक्वेस्ट, ये प्यारा सा मैसेज पर कि दिल खुश हो गया। शुक्रिया इस प्यारे से मैसेज के लिए, मुझे ये डायलॉग बहुत ही पसंद है, एंड आपने लिखकर भेजा, तो थैंक यू सो मच। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि अभी इस वक्त पारू भी मुस्कुरा के आपका ये रिक्वेस्ट सुन रहा होगा ऑन एयर FM ट्रैगोपैन से। तो चलिए मिलके सुनते हैं ये प्यारा सा गीत हम तुम का टाइटल ट्रैक।

अनजान राहों से शुरू हुई थी ये बात, दोस्ती ने फिर दिलों को करीब लाया। अनजान राहों से शुरू हुई थी बात, दोस्ती ने फिर दिलों को करीब लाया। मोहब्बत ने हर लम्हे को खास बना दिया, सफर ने कितने खूबसूरत रंग दिखा दिया। और आज बस स्ट्रेंजर्स से फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से लवर, और आप सिर्फ हम तुम, सिर्फ यू एंड आई। जी हाँ दोस्तों, वही शायरी हमें याद आया जब ये गीत सुना, हम तुम के टाइटल ट्रैक। वेल, हमारे पास बचा है सिर्फ 5 मिनट, तो फाइनल ट्रैक हम बजाने वाले हैं। ये फाइनल रिक्वेस्ट जो है वह हमें भेजा है रिमी बोरा फ्रॉम माजुली असम से। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है 2008 के फिल्म किस्मत कनेक्शन से श्रेया घोषाल एंड मोहित चौहान के आवाज में, प्रीतम दा के म्यूजिक एंड शाहिद कुरैदी एंड शब्बीर अहमद के है लिरिक्स। गीत का नाम है इज दिस लव। तो इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम को विराम करते हैं, लेकिन ये वादे के साथ कि हम फिर लौटेंगे 9:30 बजे आपके अपने हिंदी फिल्म गीत के साथ, जो है आरजेस चॉइस, जहां बजाएंगे और ढेर सारे प्यारे प्यारे गीत। जी हाँ दोस्तों, 9:30 बजे हम फिर मिलेंगे FM ट्रैगोपैन आकाशवाणी कोहिमा स्टेशन में। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया आप सभी को जिन जिन ने इतने प्यारे प्यारे मैसेज लिखकर भेजा है, इतना प्यारा प्यारा रिक्वेस्ट के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिनके मैसेजेस आज हम पढ़ नहीं पाए, जिनके रिक्वेस्ट हम आज बजा नहीं पाए, हमारे तरफ से हम माफ़ी चाहते हैं। निराश ना होइएगा, लेकिन ज़रूर बजाएंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि FM ट्रैगोपैन में चलता रहता है SMS शो, तो आप निराश ना हुए और हमें जरूर लिखकर भेजते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये फाइनल ट्रैक एंड हमारी तरफ से ये है आपके आरजे कैनी, कहते हैं ट्रालाला।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य

0: समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि DK शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और DK शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब DK शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1,600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2,00,000 शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष। आज उसकी बढ़कर के संख्या 25-30,00,000 होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव। और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर

0: प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बैंक के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है।

हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कभी कोई अजनबी नहीं रहता, कभी कोई अजनबी नहीं रहता। एक मुलाकात से शुरू हुआ सफर कब दिल के करीब आ जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर एक कहानी बन जाती है, एक अजनबी हसीना लगने लगती है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने सुना एक अजनबी हसीना से फिल्म अजनबी का एक बहुत ही प्यारा एवरग्रीन क्लासिक था, जिसका आवाज़ दिया है किशोर कुमार दा ने। एंड यू नो, इस गाने की सबसे खास बात शायद ये है कि ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में कभी कभी एक अजनबी भी इतना खास बन जाता है, फिर वह हमारे दिल से जुड़े रह जाते हैं, राइट। एनीवे दोस्तों, समय बहुत कम है हमारे पास, एंड मेरे पास और ढेर सारे गीत है जो मैं बजाना चाहता हूँ। आज शाम 20 मिनट बचा हुआ है, तो जल्दी से सुनते हैं अगला ट्रैक जो हम अभी बजाने वाले हैं, दिल अपना प्रीत पराया की फिल्म से। गीत का नाम है अजीब दास्तान।

कभी जिंदगी के रास्ते समझ से थोड़े दूर लगते हैं, कभी जिंदगी के रास्ते समझ से थोड़े दूर लगते हैं। कुछ एहसास लफ्जों में नहीं आते, बस दिल में कहीं रह जाते हैं, और फिर हर कहानी कहते हैं, अजीब दास्तान है ये। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने सुना अजीब दास्तान है ये फ्रॉम द फिल्म दिल अपना और प्रीत पराया। एंड यहाँ जो गीत अभी हमने सुना है ये एक लेजेंडरी और टाइमलेस क्लासिक है, जिससे लता मंगेशकर जी की आवाज़ ने हमेशा के लिए यादगार बना दिया, राइट दोस्तों। एंड ये फिल्म जो है वो रिलीज़ हुआ था 1960 में। एंड वैसे ऑनेस्टली ये सिर्फ एक गाना नहीं लगता, ये एक एहसास लगता है, राइट दोस्तों, एक ऐसी फीलिंग जो हर जनरेशन समझ पाती है। एंड अगर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म में मीना कुमारी और राजकुमार नज़र आए थे, और पूरी कहानी प्यार, मजबूरियां और उन जज्बातों की यू नो अराउंड घूमती है ये फिल्म। या काफ़ी सैड है, काफ़ी प्यारा फिल्म भी है ये फिल्म, जो यू नो कभी दिल में रह जाता है पूरी तरह से, आई वुड से। तो अगर

आपको भी हिंदी बॉलीवुड क्लासिक फिल्म्स पसंद है और अगर ये फिल्म आपने ना देखा हुआ है तो जरूर देखिएगा, एक बहुत ही प्यारा फिल्म है। एनीवे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ और अभी हम सुनने वाला है कभी कभी की फिल्म से एक प्यारा सा गीत। गीत का नाम है कभी कभी मेरे दिल में।

कभी कुछ बातें दिल में रह जाती हैं, कभी कुछ बातें दिल में रह जाती हैं, वक्त गुजर जाता है, प्यार यादें साथ चलती रहती हैं, और फिर दिल धीरे से गुनगुनाता है कभी कभी मेरे दिल में। जी हाँ दोस्तों, 1976 में रिलीज किया गया हुआ फिल्म कभी कभी से हमने सुना है मुकेश और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में कभी कभी मेरे दिल में। म्यूजिक दिया है कय्यम ने, लिरिक्स लिखा है सहीर ने। एंड अगर हम बात करें इस गीत के बारे में तो ये एक बहुत ही सुपरहिट एक आइकॉनिक गीतों में से एक था 1970s और 80s में। एंड इस फिल्म में नजर आते हैं अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर और वहीद रहमान, जिसका क्रिएटिविटी, जिसका कनेक्शंस बहुत ही खूबसूरत था इस फिल्म में। एंड यू नो, इस फिल्म की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ प्यार के बारे में नहीं था, बल्कि वक्त, यादों और ज़िंदगी बदलते हुए रिश्तों को, और ज़िंदगी के साथ बदलते हुए रिश्तों को भी दर्शाया गया है इस फिल्म में। बहुत ही खूबसूरत फिल्म था। एनीवे दोस्तों, समय निकलता जा रहा है, यहाँ पे एक या दो मैसेजेस आया हुआ है, तो जल्दी से पढ़ेंगे एंड सुनते हैं अगला ट्रैक। तो ये थे मोहनदे आठरुंग यिमख्यूंग फ्रॉम कोहिमा वाली खी दिया से। काली मॉर्निंग है और लॉक पाओ दे गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स कैसे। तो आठरुंग यिमख्यूंग हो काली मॉर्निंग 6 बजे दे मोहन और लॉक पाओ और थैंक यू लिखना पठाई दिया करने आज शाम भी। और ये एक मैसेज है ना से फ्रॉम अ वेरी वेरी गुड ऑल फ्रेंड ऑफ FM ट्रैगोपैन वाली खी दिया हुई से। तई को ऐसे Hello and a very good evening to you, dearest RJ Kenny. It's me, Yisan Humsoy from Voka. Just tuned in after a very long time and it's you. No words today. You seem to have got a call. Take good care. Genuinely missing all the FM Tragopan family members. Please convey my warm regards to all the super fantastic RJs and listener. Well, dear Yisan Humsoy, first of all, how are you doing? And it's been a long, long, long time, I would say. Man khushi paishi Yisan imman deri pichhe apni la message purole pado. Hotai khushi pai apni la message purole. Our listeners kan kuman nutun hai na kon hits. Yisan Humsoy ko nasib abhi asile mohala purana ekdom dedicated listener of FM Tragopan ekta se hodai bhal bhal message likhna pathai diye ajivi likhi dishe Yisan. So thank you so much and thank you for those kind words of yours. And also yes, to all the listeners who are tuning in, Yisan brataila warm regards convey kur diye ste aru moi RJs kan sob tv khopor di do Yisan. So thank you once again dear old friend, stay with us, all right? আৰু ইনা টাইম টাইম দে মেছেজ খান বি লিখি দিবি, মান বি খুশি পায়, আপনি আমি বিজি থাকিব হলো টাইম পা টাইম দিয়ে ইনা লিখি দিবি দে কোনে আপনি কিবি কৈ দি আছে। ওয়ান্স এগেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ডিয়ার ফ্রেন্ড। সো লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, শুনতে হে দ্য লাস্ট ফাইনাল ট্র্যাক আজ শাম কে কার্যক্রম মে, ইয়ে হে হাম কিসি সে কম নহি কি ফিল্ম সে ক্যা হুয়া তেরা ওয়াদা।

और बस दोस्तों, इसी के साथ आज का हिंदी फिल्म सॉन्ग्स पुरानी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। आज की शाम गीतों के नाम रही, कुछ यादों के नाम रही और कुछ उन एहसासों के नाम भी रही। म्यूजिक के साथ और भी खूबसूरत लगने लगता है, राइट दोस्तों। लेकिन जाते जाते चार छोटी सी बातें जरूर शेयर करना चाहूंगी आप सभी के साथ। तो पहला बात, हमेशा प्यार बांटिए और काइंड रहिए विद एवरीवन, क्योंकि कब कौन किस संघर्ष से गुजर रहा हो यह हमें कभी भी पता नहीं चलता, राइट। तो हमेशा प्यार बांटिएगा। एंड सेकेंडली, अपनों को अपने करीब रखिए और उनकी कदर करना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हमारे अपने हैं। एंड द थर्ड वन, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी लम्हे और छोटी छोटी खुशियाँ ही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, उन्हें संभाल के रखिएगा। एंड सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, जिंदगी की दौर में खुद को मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की दौर में खुद को मत भूलिए, अपने लिए भी वक्त निकालिए, अपना भी ख्याल जरूर रखिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ चलती हूँ मैं। हंसते रहिए, जीते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। मैं हूँ आपकी आरजे कैनी और यह था आज का आखिरी शो आकाशवाणी कोहिमा FM ट्रैक बैंड 103 MHz पर विद द वादा कि हम फिर लौटेंगे कल सुबह 6 बजे। पर आज के लिए बस इतना ही। As always, from me to you, this will be tra-la-la.

0: बरसों बाद यूं फिरने निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे, कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कर

0: कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि कल से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। सरकार ने कल से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया। मंत्रालय ने कहा कि कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय वस्त्र उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में सैनिकों की तरह कार्य करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों की प्रशंसा की। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देश भर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आओ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन के साथ मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक आपसी सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की प्रशंसा की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान से होगा। भारतीय जोड़ी ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई खिताब नहीं जीता है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में आज ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: की वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

दिल के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।